सुप्रभात। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। सुबह के 5:59 और 7 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।

0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली।

समूह स्वर में गाई इस मातृ वंदना के बाद भक्ति धारा के इस रस में बहने के लिए मन प्रफुल्लित है एक साईं भजन के साथ। स्वर है मनहर उदास का।

साईं भजन की महिमा सुनने के बाद सुनते हैं ये फरियाद ख्वासा की तरफ से, फनकारे स्वर है जानी बाबू का।

अपने दोस्त रविशंकर दुबे के साथ आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से। तो आइए ख्वाजा की नजर की इस फरियाद के बाद करते हैं कि स्तुति शुभजन के रूप में। स्वर श्रुति साडोलीकर का है।

श्रोता भक्तों, इस शुभ स्तुति के पश्चात आज की वंदना का समापन करते हैं भाई निर्मल सिंह रागी और जत्था के गाए इस कीर्तन के साथ।

भाई निर्मल सिंह रागी और जत्था के गाय इस कीर्तन के साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख और वाचन है पुष्पा अग्निहोत्री का।

0: भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं,
1: अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलो लुप्त्वं मार्दवं रीरचापलम।
0: मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा चित्त की चंचलता का अभाव होना, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब प्राणियों में हेतु रहित दया भाव बनाए रखना, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, स्वभाव की कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा भाव रखना और व्यर्थ चेष्टाओं से दूर रहना।
1: तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोः नातिमानिता भवन्ति

0: नमिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत।
1: तेज, क्षमा, धैर्य, अंतर्बाह्य शुद्धि, शत्रुभाव का अभाव एवं अपने में बड़प्पन का अभिमान न रखना आदि दैवी संपदा वाले पुरुष के लक्षण हैं।
0: दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्।
1: अब आसुरी संपदा के संबंध में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं।
0: दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पांडव।
1: दैवी एवं आसुरी दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, तू तो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है।
0: प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।
1: हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य तो कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और न श्रेष्ठ आचरण तथा सत्य भाषण ही होता है।
0: असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्।

अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आलेख था पुष्पा अग्निहोत्री का। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर हैं उत्तरा केलकर और अनूप चलोटा के। आकाशवाणी के इस भक्तिमय प्रस्तुति के लिए संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहाँ जहाँ श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम कर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आज की कड़ी में मुख्य गायन स्वर था अनूप जलोटा और उत्तरा केलकर के। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।

हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में रिले और प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। तो आपको बता दें, अब से बस थोड़ी ही देर में यानी सुबह 6:50

दस मिनट पर हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 7:10 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर हम अपने ही केंद्र से प्रसारित करेंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। सुबह 8:00 समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 8:15 पर सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। 8:30 हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:00 विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। 10:00 भोपाल से हम रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं। 10:30 पर हमारे ही केंद्र से प्रसारित होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:00 विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

दोपहर 2:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले होंगे। 2:15 पर समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम पुनः प्रसारित होंगे। शाम 5 युवाणी कार्यक्रम हमारे ही केंद्र से आप सुन सकेंगे। 5:30 फिल्म संगीत प्रसारित होगा। शाम 6 हमारा सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। शाम 7:05 पर अंग्रेजी समाचार दिल्ली से रिले होंगे। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले किए जाएंगे। 7:21 पर चौपाल कार्यक्रम हम किसान साथियों के लिए प्रसारित करेंगे। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित होगा 7:30 पर। रात 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम और 8:30 पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम। 8:15 पर समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। रात 9 विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम अनुप्रसारित होंगे। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार दिल्ली से रिले किया जाएगा। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम पुनः अनुप्रसारित होंगे। रात 10:30 पर श्रोता आनंद ले सकते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। रात्रि 11 समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी बालाघाट है। 6:50 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों का। सुनिए कार्यक्रम की पहली पेशकश।

उठेगी तुम्हारी नज़र, मगर धीरे धीरे मोहब्बत असर करेगी, मगर धीरे धीरे। ये खूबसूरत लफ्ज को स्वर दे रही थी लता मंगेशकर। मजरू सुल्तान पीरी ने इस गीत को लिखा था, दिलीप ढोलकिया ने इसे संगीतबद्ध किया था और प्यारा सा सदाबहार फिल्म गीत हमने आपके लिए चुना था, फिल्म एक राज से। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपके घर आंगन पर सूर्य की किरणों के साथ दस्तक दे रहे हैं सदाबहार फिल्म गीतों के वो अनमोल मोती जो अपने तौर पर चमकते रहे हैं, महकते रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम महका रहे हैं एक प्यारा सा गीत सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीतबद्ध किया है इस गीत को शंकर जयकिशन ने, और हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटी बेटी फिल्म से। तो आनंद लीजिए इस प्यारे से सदाबहार फिल्मी गीत का।

वाकई दोस्तों, अगर खुदा ने ये दुनिया बनाई ना होती तो वाकई इस दुनिया में खुदा ही ना होती। आइए अब कार्यक्रम के अगले अंदाज में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज़ों में एक झलक फिल्म का प्यारा सा गाना। एसएच बिहारी के बोल हैं और संगीत हेमंत कुमार का ही है।

मेरा हा हा मान ले ओ गोरी कहना मेरा न जला हा हा अच्छा नहीं दूर रहना तेरा।

0: आजा जरा
1: हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाजों में एक झलक फिल्म का प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। एस एच बिहारी के ये बोल थे जिसे संगीतबद्ध किया था हेमंत कुमार साहब ने। आइए सदाबहार कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और उसे संगीतबद्ध किया है आर टी बर्मन साहब ने। और आपके लिए हम लेकर आए हैं दिल का राजा फिल्म से ये गाना।

श्रोताओं, दिल का राजा इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत था आर डी बर्मन साहब का। अपने सुनने वालों को बता दें कि आज के सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गीत आपके लिए पेश किए वे फिल्में थी एक राज, बेटी बेटे, एक झलक, दिल का राजा। तो दोस्तों, सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनते रहिए इसी वक्त FM बैंड 101.3 MHz पर रोज़ाना सुबह 6:50 पर और रात 10:30 पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। तब तक के लिए कीजिए ये म्यूजिकल अंतराल का

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा, देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा। और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए टीम इंडिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे, जो चार

0: मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिनमें आधारभूत मानव पूंजी, भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकरण विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है, देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: इसके पूर्व एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भावनात्मक पत्र लिखा है। डॉक्टर यादव ने इस विशेष उपलब्धि पर श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, अधोसंरचनात्मक विकास तथा देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की अंतिम सूची कल जारी कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा द्वारा जारी सूची में भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। इससे पहले 9 जून को कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस आज इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 15 जून को शिलांग के मावक सियांग स्थित लारिती परफॉर्मिंग केंद्र में पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी एनईआई इंफ्रा शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। मेघालय सरकार 15 और 16 जून को पूर्वोत्तर भारत अवसंरचना शिखर सम्मेलन और एनईआई इंफ्रा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी, जिसमें पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ 8 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है, जिसके आज के अंक में हम पेश कर रहे हैं सरकार द्वारा युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कल ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। 5 दिवसीय इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण हाट में विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प, प्राकृतिक खेती आधारित उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शित वस्तुओं को देखा। वहीं मंडला की मिलेट

क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। 12 जून को कृषि मंत्रियों का एक विशेष संवाद भी इस सम्मेलन में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू करके यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, वातानुकूलन और वेंटिलेशन सिस्टम तथा आपातकालीन निकास द्वार और अग्निशमन उपकरण सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की कल घोषणा कर दी। इसके साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा भी की गई। सामान्य परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक, आदिवासी संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून आने के पहले की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। चक्रवात के दो अलग अलग सिस्टम बनने से कल कुछ हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आंधी बारिश का यह दौर कल भी जारी रह सकता है और प्रदेश में मानसून के अगले सप्ताह सक्रिय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इंदौर और आसपास के जिलों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थयात्रा आयोजित की जा रही है, जो कि 20 जून को शुरू होगी। इस यात्रा में इंदौर के साथ धार, बड़वानी और देवास के वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का समापन कल 13 राज्यों के पारंपरिक और जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति के साथ हुआ। मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह ने कल जिला मुख्यालय में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नवीन जिला पंचायत भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। शिवपुरी कलेक्टर ने आवास प्लस के लंबित आवासों की लंबित सभी किश्तों का भुगतान समय सीमा में करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी कल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल संचालन के 10 वर्ष पूरे होने पर झाबुआ में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुना में जिले की सहकारी दुग्ध समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए चारा विकास कार्यक्रम के तहत साइलेज एवं गोरस ऐप की उपयोगिता विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर के ग्राम माचल में MPIDC द्वारा अत्याधुनिक एवं एकीकृत लॉजिस्टिक हब के लिए 23 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। झाबुआ के राणापुर में SDM ने फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए और पन्ना टाइगर रिजर्व में विशेष स्वच्छता पखवाड़े के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर से प्लास्टिक कचरे को हटाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आज नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। इंदौर में वृक्ष कृषि सम्मेलन के दौरान कल विदेशी मेहमानों ने किया ग्रामीण हाट का दौरा और प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर समेत 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:21 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

नमस्कार बालाघाट कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, मौसम की अटकेलियों के बीच सूर्य की ऊर्जमयी किरणों के साथ एक प्यारी से सुबह लेकर एक प्यारी से शुभकामना के साथ आज मैं आपके साथ आपका दोस्त रविशंकर दुबे। श्रोताओं, इस वक्त आप जहाँ भी हमको सुन रहे हैं, हम चाहते हैं आप फिट होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आइए इस प्यारी से शुभकामनाओं के साथ आज के सफर की करते हैं शुरुआत एक सुविचार के साथ। दोस्तों, आज का सुविचार हम आपके लिए लेकर आए हैं महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के कलम से। वे कहते हैं, मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जी हाँ श्रोताओं, अपनी मातृभूमि के प्रति सच्ची आस्था के प्रतिमूर्ति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ये शब्द हम सभी के भीतर देशभक्ति के भाव को जगाते हैं और जगाते रहेंगे। क्योंकि श्रोताओं, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसका मुल्क से होती है, चाहे वो आम हो या फिर खास। दोस्तों, हम अपने मुल्क में आज किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं या सेवा देते हैं, वो भी राष्ट्र सेवा के रूप में याद की जाती है, जानी जाती है और दर्ज की जाती है। बशर्ते उस कार्य के प्रति आपकी ईमानदारी, त्याग और समर्पण के भाव से जन कल्याण और लोक हित शामिल होना चाहिए। याद रखें, जब आप अपनी इन सेवाओं से राहत का एक उदाहरण जब पेश करते हैं, तो उसका सुख जो होता है वो किसी बड़े खजाने से कम नहीं होता। और जब ऐसे कार्य चर्चा का विषय बनते हैं दोस्तों, तब हम इतिहास के पन्नों में अंकित कर लिए जाते हैं। यकीनन दोस्तों, इसी भाव के साथ आज आप अपने दिन की शुरुआत करें। आपकी भी सेवा वतन के किसी वतन के साथ आपके नाम पे कहीं ना कहीं समर्पित सेवा जो है वो दर्ज कर ली जाएगी, इस गीत की तरह, जो हमें अपनी मिट्टी के अहमियत की एहसास हमेशा कराता रहता है। तो आइए सुनते हैं गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर आपका अपना चहेता मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, अपने दोस्त

रविशंकर दुबे के साथ। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज की जो तारीख है बड़ी ही ऐतिहासिक और यादगार है और दिन भी बड़ा गौरवान्वित दिन है, क्योंकि आज है प्रसिद्ध भारतीय महान क्रांतिकारी और कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती। आपका जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कायस्त जाति में जन्मे वे भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि

गाड़ी छेड़ी, जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षाग्रह के रूप में परिवर्तित कर दिया।

श्रोताओं, आपको ये बता दें कि काकोरी कांड पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोगों ने सुनियोजित कार्यवाही के तहत ये कार्य करने की योजना बनाई। 9 अगस्त सन 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देशभक्तों ने रेल विभाग की ले जा रही संग्रहित राशि को लूटा। उन्होंने इस डकैती में 4,000 रुपये की राशि लूटी, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम के रूप में जानी जाती थी। इसमें अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहड़ी, सान्याल मंथनाथ गुप्त, रामप्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। इस कांड के मुख्य अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में कई यातनाएं देते हुए 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई, लेकिन बिस्मिल इस सजा को सह स्वीकार करने में पीछे नहीं रहे। हंसते हंसते फख्र के साथ फंदे की ओर जाते समय ये गीत गुनगुनाते हुए भारत माता के श्री चरणों में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके शब्द थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। श्रोताओं, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की आज जयंती पर हम उन्हें आकाशवाणी परिवार की ओर से अपने श्रोताओं की तरफ से सहृदय भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 2 5 8 3 6 8 2 4।
2: अरब श्रोताओं नमस्कार। बालाघाट कार्यक्रम में आपके लिए लाए हैं इतिहास का पिटारा। जानते हैं आज की तारीख में विश्व के इतिहास में और भारत के इतिहास में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटी और उन घटनाओं से आज की तारीख क्यों इतनी जानी जाती है। तो आपको बता दें कि 11 जून सन 1770 को जर्मनी खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। अब आपको बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है। श्रोताओं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर कोरल सागर में ये एक द्वीप स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती प्रणाली है जो कि 2300 किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। इसे श्रोताओं पानी का बगीचा भी कहा जाता है, जो कि जीवों की विविधता के मामले में सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्थलों में से ये एक है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी खोज अंग्रेजी खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक ने की थी 11 जून सन 1770 को। इसी क्रम में श्रोताओं 11 जून सन 1895 में दुनिया की पहली मोटर कार रेस पेरिस बोर्ड पेरिस आयोजित की गई थी। 11 जून सन 1921 को ब्राज़ील में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज ही की तारीख में, आज ही के दिन मिला था। 11 जून 1959 को क्रिस्टोफर कॉकरेल द्वारा आविष्कार किए गए पहले होवरक्राफ्ट का प्रदर्शन किया गया था। अब आपको बता दें कि होवरक्राफ्ट क्या है। श्रोताओं, ये एक प्रकार का एयर कुशन व्हीकल होता है जो कि पानी, जमीन, दलदल और बर्फ की सतह पर हवा के दबाव से बिना संपर्क बनाए तेजी से काम करता है और उस पर चलता है, जिसे हम होवरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। 11 जून सन 1664 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल

नेहरू की अस्थियों को उनकी अंतिम इच्छा अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों और नदियों में बिखेरा गया था। और श्रोताओं, 11 जून यानी आज ही की तारीख में 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो श्रोताओं, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक रही आज की तारीख पर। और अब आपके रेडियो सेट पर इस वादे के साथ एक गीत पेश कर रहे हैं कि गीत के बाद भी हम जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल गीत के साथ हो लीजिए, एक प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं आपके लिए।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में हम अपने युवा श्रोताओं के लाए हैं एक रोजगार सूचना। दोस्तों, SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग ने

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित विभागों के अंतर्गत ग्रुप 3 और ग्रुप सी के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। एसएससी और सीजीएल 2026 के अंतर्गत कुल पदों की संख्या है 12,256। आवेदक इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। ऑनलाइन वेबसाइट आपको बता दें ssc.gov.in। रोजगार सूचना संपन्न होती है। और अब श्रोताओं आपको बता दें कि आज की तारीख पर जिन महान हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा उनके बारे में चर्चा करते हैं। 11 जून 1997 में भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक मिहिर सिंह का निधन आज ही की तारीख में हुआ था। श्रोताओं इनके बारे में आपको बता दें कि 16 जून 1930 को पुरुलिंग पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। आपने 1966 में पनामा नहर के एक छोर से दूसरे छोर तक 77 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की थी। श्रोताओं मिहिर सेन 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि एक प्रथम एशियाई भी थे। आपने साल्ट वाटर तैराकी में अनोखी दक्षता हासिल की और 5 बार महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए। आपको 1959 में पद्मश्री और 1967 में पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया है। जिनका ऐसे मेहर सिंह का आज उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही 11 जून 1983 को आज ही की तारीख में भारत के उद्योगपति घनश्याम दास बिरला का भी निधन हुआ था। 11 जून सन 1970 में बंगाली पत्रकार और महिला क्रांतिकारी लीला नाग ने भी अपने जीवन की अंतिम सांसें आज ही की तारीख में ली। श्रोताओं आप सभी महान हस्तियों को आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे श्रोताओं की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

अरे श्रोताओं, अब जिक्र करते हैं आज की तारीख पर जन्मे महान उन हस्तियों के, जिनके बारे में आपको बता दें कि 11 जून 1989 को जन्म हुआ भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का। 11 जून 1948 को भारतीय राजनीतिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भी जन्मदिन है। 11 जून 1937 में जन्म हुआ भारतीय प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक, शिक्षाविद और कोरियोग्राफर कनक रेलेखा। 11 जून सन 1909 को आज ही के दिन जन्म हुआ K.S. हेगड़े का, जो कि भारतीय विधिवेत्ता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी। और श्रोताओं, जिक्र करते हैं आज मौसम के अटकेलियों की, तो बता दें कि भीषण गर्मी के चलते हम कभी कभी हीट वेव यानी कि लू का शिकार हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे स्वास्थ्य में खराबी आ जाती है और हमें काफ़ी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इन हीट वेव को देखते हुए और मौसम की जो बदलते रुख को देखते हुए, कभी कभी असमय बारिश और तूफान का सामना भी इन दिनों हम करते हैं। अब तो सबसे पहले आपको जब गर्मी, भीषण गर्मी, धूप रहे और आप घर से निकल रहे हों, तो निश्चित रूप से पानी पी कर निकलें और कुछ खा कर निकलें, ताकि पानी की कमी आपको ना हो और ही आप हीट वेव के शिकार ना बने। और श्रोताओं, असमय जब तूफान या बारिश हो रही होती है, तो आप किसी इलेक्ट्रिक पोल के नीचे या किसी झाड़ के नीचे बचने के बजाय किसी ऐसे महफूज स्थान पर रहें जहां आपको बिजली से होने वाली जो घटनाएं उनसे आप बच सकें। और आप अपना ख्याल रखें, महफूज रहें। और आज जिन श्रोताओं का जन्मदिन है, वो कोई अपने जीवन के असाधारण कार्य से जुड़ रहे हैं, ऐसे तमाम सौभाग्यशाली श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारी ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जहां कहीं भी रहें अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी वादे के साथ आप नमस्कार बालाघाट कार्यक्रम से हम इजाज़त ले रहे हैं। और आपको चलते चलते बता दें कि आज के इस तकनीकी कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला राकेश वर्मा और मुकेश कोष्टा का। रूपरेखा और संयोजन था धीरज कुमार का और प्रस्तुतकर्ता थे कुमार विक्रम सिंह। कार्यक्रम की समाप्ति में आपके छोड़े जा रहे हैं आपको एक गीत के साथ। बने रहिए हमारे कार्यक्रम में और सुनते रहिए आकाशवाणी बालाघाट के प्रोग्राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट। यह आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में रिले करते हैं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों

0: की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री

0: योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान

0: है मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई गज़लें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई ये नज़्म, शायर थे निदा फासले। कार्यक्रम की अगली रचना सुनते हैं निदा फासले की लिखी हुई चित्रा सिंह की आवाज़ में।

0: और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: जरूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता
0: जी
1: है कभी कभी।
0: भाई, बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल
1: हाँ
0: होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलो गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में हम लोग साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारी

0: हमारे कप मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
1: हाँ तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
0: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है।
1: हाँ
0: तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
1: बिल्कुल। इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं
0: हाँ
1: तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
0: बस, आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कि कितने कितने
1: हाँ
0: लाइक्स हो गए,
1: वो
0: कितने
1: लाइक कितने
0: कमेंट्स
1: बढ़
0: हो
1: गए।
0: गए वो
1: हाँ
0: उसी देख में लगे रहते हैं।
1: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें यह समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
0: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है, कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज़ को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते। तो
1: बिल्कुल
0: हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे
0: बिल्कुल
1: मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, इसके इसके ये आएगा तब खुश होंगे। ये तो सिर्फ एक बहाने हैं, लेकिन वो
0: बिल्कुल
1: खुशी छोटे छोटे पलों में जैसा आप
0: बिल्कुल, और
1: बता
0: ये
1: रही हैं।
0: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि
1: जी
0: हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तखिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये
0: बिल्कुल
1: इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा है उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
1: क्या बात
0: क्योंकि
1: है।
0: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
0: एक
1: ये
0: प्यारा सा
1: प्यारा
0: गीत।
1: सा गाना।

0: सुनकर हमारे श्रोताओं हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
1: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है।
1: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है हमें, कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में खुजली हो रही थी बस माचिस की तीली लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
1: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं।
0: हाँ, हेयर पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना
1: जी
0: जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
1: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी, नुकीली चीजें,
0: बल्कि हम
1: हेयर
0: कहेंगे
1: पिन,
0: कि आप
1: इनका तो
0: इनको
1: कभी
0: बिल्कुल
1: ना
0: आप
1: करें।
0: इसको बहुत

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: किंग ऑफ फैशन इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में, फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर चलता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा, तो
1: मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
1: खेलने की बहुत चाहत थी, जिम्मेदारी साथ हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी,
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने, ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल?
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूचरंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी, हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, देखिए बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं हम किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आज मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल ही बनाते थे, हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मुझे सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर ढाई महीने छोड़ दिया, यानी दो महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में दसवीं पास करना लोहे के चने जमाने जैसा था।
0: हाँ, हाँ।
1: पहले से दसवीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे
1: मैंने कसम खाया था कि मैं दसवीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था दसवीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो दसवीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे, आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं आप? बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके, ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ। मैं आपका झमकार सुन के मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्टकार्ड में अपना नाम पता भेज रही हैं, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी मैं छोटेपन में, अभी खो खो खेलती थी, और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी,
0: क्यों?
1: बहुत लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरी बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए, अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। विविध भारती
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत गाते हैं और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये?
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसुंतर बोलो मैम।
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम ठीक है। मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ मैम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसुंतर बोलो। मैम
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ।
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है मैम।
0: अच्छा समय रहते घर पहुँच जाते हो।
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोड़ा इसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान और दूसरा है।
0: हाँ। और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत भी हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे, आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम,
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए, क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा, तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा, मैं आपसे 2 या 3 लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए, अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए, और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है, कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल

0: उत्साह की का प्रेरणा देता है, बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए?
0: खेलों की बात की जाए तो रस्साकस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था, और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और
1: हाँ
0: खेलने का मन होता है।
1: लेकिन
0: जी मैम,
1: आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
0: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हम बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदतें डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
0: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
1: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।

0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी
1: जी
0: है। तो बताइए,
1: जी
0: चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का वो जो सामने नजर आ गया ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था आपका?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288। हमारा दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

अभी श्रोता साथी सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा श्रोता साथियों का स्वागत है आपके रेडियो मित्र ब्रजेश शिवहरे और आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से। दोस्तों, सबसे पहले हम आज इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं 11 जून को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आज ही के दिन। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में आज ही के दिन बिखेरी गई थी। कोर्निकोवा महिला टेनिस की सबसे सुंदर खिलाड़ी घोषित हुई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज किसान नेता राजेश पायलट का एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ था आज ही के दिन। नेपाली संसद ने आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त कर दिया था। ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया था आज ही के दिन। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। ब्राज़ील में महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था आज ही के दिन। और आज ही के दिन ब्रिटेन की आयरन लेडी के नाम से मशहूर मार्गरेट थ्रेशर ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने जमुना निषाद के स्थान पर धर्मराज निषाद को मंत्रिमंडल में आज ही के दिन शामिल किया था। ये कुछ खास घटनाएं हैं दोस्तों आज की

0: अब दोस्तों बात करते हैं 11 जून को जन्मे प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन, जिन्होंने काकोरी ट्रेन कांड में अहम भूमिका निभाई थी और देश के लिए अपना बलिदान दिया था। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्म हुआ था। शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, आप भारत के भूतपूर्व 17वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, आपका आज के दिन जन्म हुआ था। भारतीय उत्प्रेरक वैज्ञानिक पाल रत्नस्वामी और कनक रेले, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, कोरियोग्राफर और शिक्षाविद, आपका भी आज के दिन जन्म हुआ था। भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के एम हेगड़े जी का जन्म हुआ था। और मिजो राष्ट्रवादी, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे थे, लाल डेंगा जी का भी आज के दिन जन्म हुआ था।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
2: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लाल बर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: अब दोस्तों बताते हैं आपको कि आज कौन कौन सी ऐसी प्रसिद्ध हस्तियां हैं जिनका निधन हुआ था। कन्नड़ भाषा में लिखने वाले एक भारतीय कवि, नाट्यकार और दलित कार्यकर्ता सिद्धलिंगैया जी का आज निधन हुआ था। मिहिर सेन आप भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे। वासुदेव वामन शास्त्री खरे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार, कवि, नाटककार और जीवनी लेखक थे। आप भारत के उद्योगपति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिरला परिवार के एक प्रभावशाली सदस्य घनश्याम दास बिरला जी का आज ही के दिन निधन हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था प्रसिद्ध बंगाली पत्रकार और महिला क्रांतिकारी लीला नाग जी का।

अब दोस्तों बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की, जो प्रत्येक वर्ष 11 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेल की शक्ति का जश्न मनाने का समय है दोस्तों। यह जागरूकता बढ़ाने का समय है कि प्रत्येक बच्चे के विकास और कल्याण के लिए खेल कितना महत्वपूर्ण है, और यह वह समय है जब हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा खेलने के अपने अधिकार का पूरा लाभ उठा सके। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है, खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। यह विषय हम सभी को, सरकारों, व्यवसायों, स्कूलों और परिवारों को ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर आधारित ही होते हैं। खेल रचनात्मकता, लचीलापन और सामाजिक कौशल को विकसित करता है, जो जीवन भर सीखने और खुशहाल जीवन की नींव रख देता है। सुरक्षित स्थानों के अभाव में सबसे समर्पित देखभालकर्ता भी बच्चों के खेलने के अधिकारों का समर्थन करने में संघर्ष करते हैं। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वार्षिक आयोजन को सुगम बनाते हैं। आप जहां भी हों इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे वह अपने बच्चों के साथ खेलने के नए विचारों को आजमाना हो या अपने दोस्तों, परिवार और नेटवर्क के बीच खेल की शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाना हो।

दोस्तों, 11 जून को राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस भी मनाया जाता है, जो उन लोगों को समर्पित है जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। चाहे आप रिश्तों को संवार कर या दूसरों को व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने में मदद करके सुंदरता का निर्माण कर रहे हो, या आपके कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ रहा हो, आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीवन को सुंदर कहीं न कहीं पर बना रहे हैं। सुंदरता अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है दोस्तों, दयालु शब्दों से लेकर कोमल हृदय तक। जो लोग दूसरों का हौसला बढ़ाते हैं और आशा की छोटी छोटी किरणों में भी शक्ति पाते हैं, वे ही इस संसार में सुंदरता का संचार करते हैं। कुछ लोग अपने साहसिक कला के माध्यम से संदेश देते हैं, तो कुछ जरूरत के समय मदद के लिए आगे आते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को आज के दिन सम्मानित करें जो सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसा करके उसके जीवन को सुंदर बनाता है। किसी के व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करके हम उनके जीवन को सुंदर बना सकते हैं।

किसी नेक कार्य के लिए समय को दान करके हम कहीं ना कहीं पे सहायता प्रदान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करें या किसी के लिए कुछ भी अच्छा काम करें, ये सभी इसी श्रेणी में आती है।

श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एयरलिफ्ट से।

लीजिए अब सुनिए अदनान सामी के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है ऐतराज़।

0: और इसी फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिरी में सुनिए आदेश श्रीवास्तव और हेमा सरदेसाई के युगल स्वर में समीर का लिखा वो गीत जिसे संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने और जिसे हमने लिया है फिल्म बागबान से।
1: Valentine's Day.

0: फिल्म बागवान के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध जानकारियों, सूचनाओं और गीत संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट। गुड इवनिंग बालाघाट।
0: गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आत्मीय अभिनंदन आपके मित्र ब्रजेश शिवहरे और आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम हमने केंद्रित किया है भारतीय पार्श्व गायक और गज़ल गायक हरिहरन पर। आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होगी और आपके गाए गीत भी हम सुनेंगे इन संदेशों के बाद।
2: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
3: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल

0: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिंदी फिल्मों के कई मशहूर गीत आपने गाए हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की जो भारतीय पार्श्व गायक और गजल गायक हैं। 2004 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वर्सेटिलिटी के बादशाह माने जाने वाले प्लेबैक सिंगर हरिहरन का जन्म 3 अप्रैल 1955 को हुआ था। हरिहरन ने कर्नाटक, हिंदुस्तानी, क्लासिकल, गजल से लेकर पॉप और बॉलीवुड गाने भी गाए हैं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद हरिहरन का ये मानना है कि उनके लिए स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जिंदगी के भाव की समझ बढ़ती है, जो आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने कैरियर की शुरुआत में हरिहरन ने कई कॉन्सर्ट किए और टीवी पर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों के लिए गाया। 1977 में उन्हें दिवंगत संगीत निर्देशक जयदेव द्वारा उनकी नई हिंदी फिल्म गमन के लिए गाने के लिए अनुबंधित किया गया था। हरिहरन ने 1992 में नवोदित संगीत निर्देशक एआर रहमान के साथ तमिल फिल्मों की दुनिया में प्रवेश किया। यह मणिरत्नम की फिल्म रोजा थी।

हरिहरन आज भी रोजा बॉम्बे ताल हम दिल दे चुके सनम खामोशी और लक्ष्य के गानों के लिए ज़्यादातर जाने जाते हैं। हरिहरन को जोगवा के मराठी गीत जीव रंगला के लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला जिसे वर्ष 2009 में अजय अतुल ने बनाया था। 1998 में हरिहरन ने अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध हिंदी फिल्म बॉर्डर के गीत मेरे दुश्मन मेरे भाई के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध जानकारियों, सूचनाओं और गीत संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। और हमारे आज के कलाकार हैं हरिहरन। हरिहरन साहब गजल गायक और संगीतकार हैं, जिनके 30 से भी अधिक एल्बम हैं। अपने शुरुआती करियर में उनकी कई सफल गजल एल्बमें जारी हुई है, जिसमें से अधिकांश को उन्होंने स्वयं संगीत दिया है। हरिहरन की पहली गजल एल्बम में से एक थी आशाएं गजल, जिसमें आशा भोसले उनके साथ थी। एक और उत्कृष्ट गजल एल्बम गुलफाम थी उनके द्वारा। अन्य प्रमुख गजल एल्बम हाजिर, जश्न, हल्का नशा, पैगाम, काश और लाहौर के रंग हरि के संग हैं। उनकी लाइव कॉन्सर्ट रिकॉर्डिंग हरिहरन इन कॉन्सर्ट, सप्तऋषि और स्वर उत्सव सफल रही है। हरिहरन तबला वादक जाकिर हुसैन के साथ अपनी एल्बम हाजिर में काम कर चुके हैं। अजीब सा निहा मुझ पर गुजर गया, डायरेक्टर मुजफ्फर अली की फिल्म गमन की इस गजल को शायद कम ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन उस वक्त इस गाने के लिए निकली हरिहरन की आवाज़ आज भी उतनी ही मुकम्मल है जितना कि ये प्यारा सा गीत जो है फिल्म हम दिल जीत चुके सनम से।

हरिहरन साहब की यदि हम बात करते हैं तो जितनी मिठास हिंदी भाषी गीतों में महसूस होती है उतनी ही जादूगरी मलयालम कन्नड़ और बांग्ला गीतों में भी होती है। कई भाषाओं में सुरों की पकड़ होने के सवाल पर हरिहरन साहब कहते हैं कि मैं एक गायक हूँ, मैं खुद को गज़ल या क्लासिकल सिंगर नहीं कहता हूँ, मैं हर जॉनर में डूबकर गाता हूँ। जहाँ तक सवाल भाषा का है तो लफ्ज़ों में सुर भरने से बात अपने आप ही बन जाती है। पद्मश्री की उपाधि के साथ 2 बार नेशनल अवार्ड अपने नाम करने वाले हरिहरन साहब कहते हैं कि गायक कभी रिटायर नहीं होता है। जब तक गाने वालों की आवाज़ में जादू है तब तक वो रिटायर हो ही नहीं सकता। सुरों में आध्यात्म है, रोमांस है, फिलोसफी है। यही वजह है कि सुर मुझको एनर्जी देते हैं और जीने का तरीका बताते हैं। फिलहाल मैं पूरी शिद्दत से गा रहा हूं, जब तक मेरे सुरों में जादू है मैं रिटायर नहीं होऊंगा। हर कलाकार की तरह मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा था, लेकिन मैं खुश हूं कि जिसकी तमन्ना थी वो मुझे मिल गया है। मैंने जिस अंदाज में जिंदगी और सुरों के नाते जोड़ने चाहे वो जुड़े हैं। जहाँ तक सवाल वर्सेटाइल होने का है तो उसके बाद इसको काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन अपनी एक पहचान होना ज़रूरी है और हरिहरन साहब इसमें कामयाब भी रहे।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट अब यहीं पर संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए भारतीय पार्श्व गायक और गजल गायक हरिहरन के स्वर में चंद फिल्मी गीत।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। दोस्तों, ये समय है कार्यक्रम सुगम संगीत को सुनने का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह, मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह के स्वर में चंद गजलें। प्रारंभ करते हैं इस गजल के साथ, स्वर है जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसी क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली सिंह के स्वर में ये गजल।

इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण के तहत हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा 7:10 पर, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

शाम 7:21 का समय होगा किसान श्रोता साथियों के कार्यक्रम चौपाल का, और इसी क्रम में आप सुनेंगे शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी। फिल्म संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात 8 बजे से लेकर रात 8:30 तक, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर कार्यक्रम पॉप म्यूजिक। हमारे आज के कलाकार होंगे अदनान सामी।

रात 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली समाचार, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात 9 बजे से लेकर 9:15 तक और रात 9:30 से लेकर रात 10:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट न्यूज, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10:30 का समय होगा कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम को सुनने का। रात 11 होंगे समाचार और रात 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचारों का प्रसारण भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 7:05 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में पीएम मोदी का संदेश, दुनिया की अनिश्चितता के बीच आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर भारत। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, इजराइल समेत कई देशों के नेताओं का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 14 जून को आयुष मंत्रालय के ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ने की अपील की और प्रदेश की तीनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित रिटर्निंग ऑफिसर ने सौंपे प्रमाण पत्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर

0: समझते हुए केन्द्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता बताया। इस वर्ष बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेताओं से मिली बधाइयों के लिए आभार व्यक्त किया है। 10 जून को 12 वर्ष पूरे कर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। श्री मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी, इसराइल, इटली, गुयाना और भूटान के नेताओं का धन्यवाद करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित विशेष ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। ये सत्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है और आज ये एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी मारविक्स पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारत ने इस मामले में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है। हालांकि 24 भारतीय चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बावजूद देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है। इंदौर में जारी 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के तीसरे दिन भारत समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया। सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक कूटनीति और व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति की है और अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। सम्मेलन में शामिल इथियोपिया के एक प्रतिनिधि ने कहा,
2: मैं इंडिया में बहुत बहुत खुश हूँ, भारत में बहुत खुश हूँ। हमारा दोनों देश, प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार हमारा देश गया था, अच्छा स्टेट विजिट था। हमारा प्रधानमंत्री, इथियोपिया का प्रधानमंत्री भी अच्छे से स्वागत कर दिया मोदी जी के लिए। सो दोनों देशों बीच में अच्छा रिश्ता है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें भाजपा ने जीत ली है। भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। नाम वापसी की अंतिम समय सीमा 3:00 बजे समाप्त होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में अनियमितता के आधार पर मंगलवार को ही खारिज कर दिया गया था। इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून का दिन क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन सुबह 10 बजे विदिशा के बेरखेड़ी जट्टू में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे भारत का मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों ने इस योजना को अपने जीवन में आए बड़े बदलावों का कारण बताया है। इस योजना के हितग्राही द्रौपदी राय बताती हैं।
4: उज्ज्वला योजना मिलने से ये भी फायदा हुआ है कि मेरे घर में अब धुओं से राहत होगी तथा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में

0: बहुत सुधार हो गया है, ना तो समय की बचत हो गई है। और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस योजना से महिलाओं को सम्मान मिला है तथा जीवन यापन में बहुत सुधार आया है।
1: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने आज भोपाल सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और ट्वीशा शर्मा केस के आरोपी सेवानिवृत्त जज गिरबाला सिंह से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान टीम ने महिला वार्ड, अस्पताल, रसोई घर, पुस्तकालय और आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर का जायजा लिया। सब्जी उत्पादन में प्रदेश देश के अंदर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बताया कि बीते 4 वर्षों में राज्य का सब्जी उत्पादन करीब 21,58,000 मीट्रिक टन बढ़कर 257,99,000 मीट्रिक टन हो गया है। प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर 19 टीम का ऐलान कर दिया है। यशवर्धन सिंह चौहान को कप्तान और लक्ष्य रायचंदानी को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम अगले महीने 3 वनडे और 2 मल्टी डे मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और खाद वितरण निगरानी की विस्तृत समीक्षा की। खंडवा जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र खालवा में परंपरागत चिकित्सकों भूमका और पढ़िहार के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा ने सीहोर में सीवन नदी के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। शहडोल संभाग के 3 जिलों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 126 नए स्कूल भवन बनाने की तैयारी है। मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर स्थित भोजनालय के संचालन की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। राजगढ़ में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां निरंतर संचालित की जा रही हैं। नीमच कलेक्टर की पहल पर गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बालिका के उपचार के लिए भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी से 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। सिंगरौली जिले में संचालित 5 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। रायसेन स्थित हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा के दरगाह शरीफ परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शिवपुरी में थोक उर्वरक विक्रेताओं के पास उपलब्ध स्टॉक की निगरानी और वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण दलों का गठन किया गया। छिंदवाड़ा के तामिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिंथोली में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। अशोकनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई। जबलपुर में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. कैलाश आटव ने अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और उत्थान से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। FMN पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 7:21 हुए, सुनिए किसान श्रोता साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भाइयों और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के चौपाल में। और आज आपके साथ हैं मैं संतोष विसेन
1: और मैं राहुल जोशी।
0: स्वीकारें हमारा नमस्कार। तो राहुल भाई, जिस तरह से किसान हित की बात हमारे देश में चल रही होती है और मौसम का जो साथ है हमारे किसान भाइयों को मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत ही अच्छा प्रयास करते हैं। और जैसे कि अभी ये मौसम जो है वो गर्मी का चल रहा है, तो निश्चित तौर पर मृदा स्वास्थ्य के परीक्षण के साथ, अगर हम यूं कहें कि हमारे किसान भाई खेत को बचाने के लिए अगर उसका परीक्षण कराते हैं, उसका चेकअप कराते रहते हैं, मृदा की जांच कराते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों को आने वाली खरीफ की फसलों में अच्छा फ़ायदा देखने में मिलेगा। और लगातार किसान भाई इस दिशा में प्रयोग भी करते हैं कि उर्वरकों का जो इस्तेमाल है वो संतुलित हो और जो फसलें हैं वो कम अवधि की हों, उनमें कीटरोधक क्षमता जो है वो अधिक हो, तो इससे खेत को बचाने के लिए बहुत सहायता मिलती है और हमारे किसान भाई इसके लिए तत्पर भी रहते हैं और लगातार प्रयास भी करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: जी संतोष भैया, आपने जिन सभी बातों का वर्णन किया उन सभी बातों को पूर्ण करने के लिए कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है और जिसे खेत बचाओ अभियान का नाम सरकार द्वारा दिया गया है, जिसका उद्देश्य मृदा के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रसायनों को अधिक उपयोग को कम करना, वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। यह पहल मृदा संरक्षण को बढ़ावा देती है और किसानों को पीएम किसान जैसी प्रमुख सहकारी योजनाओं तक पहुंचाने में सहायता करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाए रखना, जिससे कि पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। पर्यावरण के प्रमुख अनुकूल जैव उर्वरकों को प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ संतोष भैया, हमारे जो किसान साथी हैं उन्हें सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि वे मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाएं, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि भूमि में पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत के अनुसार ही हमारे जो किसान साथी हैं पोषक तत्वों का प्रयोग करें और नियमित रूप से मृदा परीक्षण का कार्य करें। इसके लिए एक मिशन के रूप में इसे चलाया गया है। साथ ही साथ फसल विविधीकरण का भी एक प्रयास सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और किसानों के बीच में इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है कि हमारे जो किसान हैं दलहन और तिलहन फसलों का भी उत्पादन लें। और इसके लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ कृषि विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं, वे निरंतर हमारे किसानों के बीच में जाकर उन्हें इसके बारे में जो जानकारी है वो जानकारी दे रहे हैं, उन्हें इस योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि हमारे जो किसान नियमित कृषि फसलों के साथ साथ दलहनी और तिलहनी फसलों का भी उत्पादन ले। साथ ही साथ जो फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, इन सभी योजनाओं में किस प्रकार से नामांकन कराया जाए, किस प्रकार से हमारे किसान साथी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, इन सभी विषयों का हमारे जो किसान साथी हैं इनके लिए जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा यह खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और इसके माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
0: बिल्कुल, और इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही सकारात्मक है। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, फसलों की पैदावार बढ़ती है और खेत बचाओ अभियान से हमारे एक एक किसान भाई के ज़मीनी स्तर पर फ़ायदा होता है। और यह पहल वैज्ञानिकों और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले किसानों को जलवायु के प्रति लचीली और संसाधन कुशल कृषि को बढ़ावा देने के लिए जोड़ती है। जानकारी और जागरूकता की श्रेणी के क्रम को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन किसान भाइयों अभी वक्त है मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: कार्यक्रम किसान वाणी के आज के अंक के साथ हम एक बार पुनः उपस्थित हैं किसान भाइयों आपके साथ, और आज आपके साथ हूं मैं।

0: संतोष बिसेन
1: और मैं राहुल जोशी।
0: बिल्कुल, तो राहुल भाई, जिस तरह से हम हमारे किसान भाइयों को जानकारी का जो सिलसिला है वो आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी देना चाहेंगे कि किसान भाई इस समय मृदा के स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकते हैं और खरीफ की फसलों की तैयारी के लिए जो समय मिलता जा रहा है उसका सदुपयोग करते हुए हमारे किसान भाई जो हैं वो आगामी समय की फसलों की तैयारी की तरफ विशेष ध्यान दे सकते हैं। और राहुल भाई, हम किसान भाइयों को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जल संरक्षण के लिए बारिश का जो पहले का समय होता है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस समय का सदुपयोग अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में जल संवर्धन के लिए अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही बड़ा भागीरथ प्रयास होगा और जिसका परिणाम ये होगा कि भूमि में जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ेगा और इससे हमें आने वाले समय में जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूँकि लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के कारण जल की जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे हमारे से दूर होती जा रही है और देखने में यह आ रहा है कि भूमिगत जल का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी अपनी खेती के लिए जो जल की उपलब्धता है वो कम पड़ती जा रही है और इस जल के कमी के साथ अगर हमारे अन्नदाता किसान भाई जो हैं वो कृषि को करते हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही बड़ी लड़ाई के रूप में देखी जाती है। और विगत 12 वर्षों की बात करें और सरकारी सुविधाओं की बात करें और किसान भाइयों की प्रगति की बात करें तो ये 3-4 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो संयोग है, यह बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने पिछले 12 सालों में जो प्रगति की है निश्चित तौर पर वह बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि सरकार के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न योजनाएं, जिसके अंतर्गत किसान कल्याण योजना, आय सुरक्षा योजना, तकनीकी आधुनिकीकरण, साथ ही संचार क्रांति का उपयोग, बाजार तक पहुंच और ग्रामीण विकास को जोड़कर एक व्यापक कृषि का जो इकोसिस्टम विकसित किया गया है सरकार के माध्यम से और किसान भाइयों के प्रयास से, निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों को इसमें बहुत ही अच्छा विकास जो है वो देखने में आ रहा है और किसान भाई इससे संतुष्ट भी हैं। उनकी जो फसल है उसका जो अच्छा लाभ है, उसका जो उचित मूल्य है, उन्हें लगातार मिल रहा है और इन सब का जो प्रयोजन है वह यह है कि हमारी जो कृषि है वह टिकाऊ होनी चाहिए और लंबे समय तक इसका फायदा जो है वो हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है। तो राहुल भाई, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी संतोष भैया, जो इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पिछले 12 वर्षों में कृषि में जो जिस प्रकार से आपने जैसे बताया कि सरकार की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में काफ़ी व्यापक विस्तार हुआ है और साथ ही साथ जो कृषि में अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार प्राप्त की है, जिससे पिछले 12 वर्षों में निरंतर नीतिगत फोकस और सार्वजनिक निवेश में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से भारत के कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है और साथ ही साथ रिकॉर्ड कृषि बजटीय सहायता जो सरकार के माध्यम से कृषि क्षेत्र में दी जा रही है, इससे आर्थिक प्रगति, ढांचागत सुधार संभव हो पाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि विभाग के बजट की सीमाओं को पूरी तरह से बदल दिया है। सरकार ने किसानों के कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता माना है और कृषि क्षेत्र को विकास जो अपनी प्राथमिकता में रखा है, जिससे कि कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। साथ ही साथ फसलों के उत्पादन में जो फसलों का उत्पादक मूल्य है उसमें ऐतिहासिक सुधार हुआ है और किसान साथियों को जो उनकी कृषि की जो उपज है उसका सही मूल्य प्राप्त हुआ है, जिससे किसानों की आर्थिक जो आर्थिक रूप से हमारे किसान साथी मजबूत हुए हैं।
0: बिल्कुल मजबूत हुए हैं और इस मजबूती के साथ हम किसान भाइयों को यह कहना चाहेंगे कि वे अगर अपने खेतों में पौधारोपण करते हैं जिससे जल संवर्धन भी होगा और पौधों से एक थोड़े समय बाद उन्हें आय भी मिलती है। तो क्यों ना हम किसान भाइयों को आपके द्वारा ली गई ये भेंटवार्ता सुनाएं जिसमें महोगनी का जो पेड़ होता

0: है उसकी बारे में विस्तार पूर्वक आपने चर्चा की है, तो आइए किसान भाइयों सुनते हैं यह ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण भेंटवार्ता।
1: किसान श्रोताओं को राहुल जोशी का नमस्कार। किसान साथियों, हमारे जो किसान साथी हैं नियमित कृषि फसलों का उत्पादन तो लेते ही हैं, साथ साथ हमारे किसान साथी आजकल वानिकी फसलों का भी उत्पादन लेने लगे हैं, जिससे उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। किसान साथियों, तो कौन कौन सी वानिकी फसलें हैं जिसका उत्पादन आप ले सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र भलावी, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय मोजल फॉर्म वारासोनी। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: सर, हमारे जो किसान साथी है कौन कौन सी वानिकी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं जिससे अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त।
2: जिस प्रकार से आज का जो सिनेरियो चल रहा है, माहौल चल रहा है, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं कि हमारे आसपास में जो पेड़ है, हमारा आसपास की जो वन संपदा है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही, जिसकी वजह से कभी बारिश बहुत ज्यादा होती है, कभी नहीं होती है, कभी तेज धूप होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो वहीं आज हम कृषि में, कृषि वानिकी का जो खेती है उसको हम अब लाए हुए हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मेड़ों में हो गए या प्रतिभूमि में बहुत सारे से जो वानिकी के जो पौधे हैं उसको लगा के अधिक से अधिक हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें हम महोगनी का जो पेड़ है उसको भी हम लगा सकते हैं, मुंगे का जो पेड़ है उसको भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार कृषि वानिकी में जो उद्यानिकी के जो पौधे हैं, आम के पेड़ हो गए, अपने अमरूद के पेड़ हो गए और आंवले के पेड़ हो गए, उसे भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें बांस के पौधे भी हम उसमें लगा सकते हैं, जिसकी उचित रखरखाव और उचित तरीके से प्रबंधन करके हैं हम खेती के साथ साथ एक अतिरिक्त जो लाभ है हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर, कौन कौन सी वानिकी फसलें हैं जिनसे हम उत्पादन ले सकते हैं और अभी इसका उत्पादन लिया जा रहा है, जिससे हमारे किसान साथी अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये किस प्रकार से इनका उत्पादन किया जा सकता
2: है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम अभी जो चर्चा में हैं और जो अभी हमारे किसान भाई उपयोग में ला रहे हैं कृषि वानिकी में, इसमें एक महोगनी का पेड़ होता है जो कि बहुत ज्यादा हमारे जो किसान भाई हैं इसकी तरफ अभी रुझान बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसकी एक वजह है कि ये काफी फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, जिसकी हम 12 से 15 साल की उम्र में इसकी हम कटाई आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो पेड़ है ये इसके जो लकड़ी होती है ये लाल प्रकार की होती है, जैसे हम लाल चंदन की बात करते हैं उसी प्रकार से लाल पूरा इसका जो बाहरी जो काष्ठ होता है वो होता है, जिसमें दिमाग भी नहीं लगता और जितने भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंटल जो हम वाद्य यंत्र बनाते हैं या जहाज की लकड़ियां हो या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है अपनी महोगनी के पेड़, इसलिए सब अभी रुझान अभी महोगनी के पेड़ की ओर हमारे किसान भाइयों को जा रहा है। इसकी दूसरी चीज, ये खासियत ये भी है कि इसका जो प्रति घन मीटर जो वर्ष जो उत्पादन है, मतलब काफी बहुत फास्ट ग्रोइंग जो पौधा है, तो इसकी वजह से उसका जो उत्पादन है काष्ठ का वो भी बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, इसमें किसी प्रकार का भी दीमक या किसी प्रकार का भी जो कीट का जो प्रकोप होता है ये कम से कम होता है, और जिसके वजह से जो प्रबंधन करना हो वो बहुत आसान हो सकता है। उसे हम किसी भी प्रकार से हम लगा सकते हैं, चाहे तो हम उसे मेड़ों में लगा सकते हैं, चाहे तो हम उसे अपनी जो अंतर्वर्ती जो फसलें हैं उसके बीचों में भी हम उसको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पेड़ होता है ये पेड़ एकदम सीधा उगता है, एकदम सीधा ही सीधा जाता है। जैसे कि हम बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, शाखाएं निकलती है, जो कि चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, पर इस पेड़ की खासियत रहती है कि ये सीधा मान की ओर ही आगे बढ़ता है और इसकी ऊंचाई भी हमें 20 से 25 फीट तक हमको प्राप्त होती है। दूसरी चीज, जब ये बढ़ता है पौधा तो इसकी जो पत्तियां होती है, जो निचले कलम में जो पत्तियां होती है, वो अपने आप उस पत्तियों को गिरा देता है। सिर्फ ऊपरी ही जो क्राउन है या ऊपरी जो पेड़ का रुख होता है वहीं पे पत्तियां ज्यादा रहती है, तो इस प्रकार से जो छाया वाली जो समस्या आती है हमारे फसलों में, अगर हम अंतर्वर्ती फसलें लगाते हैं जिसमें हम धान हो गया, गेहूं, ये कोई भी चीज़ लगाए, तो उसमें जो समस्या आती है कि हम छाया पड़ रही है हमारे फसलों में तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो समस्या कम से कम होती है। दूसरी चीज, अगर इसी को हम अगर पूर्व से पश्चिम दिशा में डायरेक्शन में उसको अब हम लगाते हैं तो ये समस्या और कम से कम हो जाती है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी जब इस पेड़ों में पड़ती है तो उसकी छाया हमारे दूसरे पेड़ों में पड़ती है, तो उसका जो प्रभाव है कि सूर्य की रोशनी का जो प्रभाव है प्रॉपर तरीके से हमारे पेड़ों में पड़ेगा और हमारे फसलों में पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इस पेड़ों को अगर हम चाहे महोगनी के पेड़ को उसको

0: लगा के अधिक से अधिक लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर, महोगनी के पेड़ हमारे जो किसान साथी लगाना चाहते हैं, किस प्रकार की प्रारंभिक तैयारी रहती है और किस प्रकार से हमारे किसान साथी इसको लगा सकते हैं?
0: महोगनी के पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो महोगनी के जो पौधे हैं उनकी उपलब्धता, क्योंकि बाज़ार में आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो महोगनी के नाम से हमें जो पेड़ हैं वो उपलब्ध कराती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ऐसी संस्था से पौधे खरीदना चाहिए जो विश्वसनीय हो, है ना। दूसरी चीज़, जब भी हम पौधे लगाते हैं, महोगनी के पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उसकी जो दूरियां हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि क्योंकि इसकी खासियत है कि हम बंजर भूमि हो या उपजाऊ भूमि हो, हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो दूरियां हैं पौधे से पौधे की जो दूरियां हैं उसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे बहुत ज़रूरी है कि इसमें 8x8 का जो डिस्टेंस है हमारा पौधे का वो लगाना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा पौधा होता है तो इसलिए हमारी कोई दिक्कत नहीं जाती। इसलिए हम 8x8 में, अगर हम कमर्शियल तौर में इस पौधे को लगाना चाहते हैं, तो हम इस जो डिस्टेंस है या दूरी

0: लगा सकते हैं। तो इसकी जो दूरियां हैं पौधे से पौधे की जो दूरियां हैं उसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे बहुत ज़रूरी है कि इसमें 8 बाय 8 का जो डिस्टेंस है हमारा पौधे का वो लगाना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा पौधा होता है तो इसलिए हमारी कोई दिक्कत नहीं जाती। इसलिए हम 8 बाय 8 में अगर हम कमर्शियल तौर में इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो हम इस जो डिस्टेंस है या दूरी है इसमें हम इस पौधों को लगा सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है तो ज़रूरी है और स्वाभाविक सी बात है कि इसे उतनी ही भोजन की आवश्यकता होगी, उतना अच्छा पानी और सिंचाई की आवश्यकता भी होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छी खाद की उपलब्धता होना चाहिए, जिसमें पकी हुई गोबर की खाद हो या केंचुआ की खाद हो। साथ ही साथ कुछ जो हमारे जो दूसरे जो पोषक तत्व हैं जो रसायन से प्राप्त होते हैं, जैसे DAP हो गया, यूरिया हो गया, है ना, NPK हो गया, उसको भी हम उपयोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके अपने जो फसल है महोगनी की उसको उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी पैदावार हम उसको प्राप्त कर सकते हैं।
1: पर जो पौधा है उसे लगाने का कुछ जो मौसम विशेष में इसे लगा सकते हैं या इसे कभी भी लगाया जा सकता है?
0: इस पौधे को आप कभी भी लगा सकते हैं, पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा जो जलवायु है और उस समय जिस समय बारिश का समय होता है सब अति उत्तम माना जाता है कि अगर इस समय आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो आपके पौधे का जो सर्वाइव है या उसके आगे बढ़ने के चांस 100% हो जाता है। तो आप इसे अगर बरसात के समय उसको लगाए तो ये काफ़ी अच्छे आपको फ़ायदा मिलेगा, पर अगर आपको बरसात का समय निकल गया है तो उसके बाद में भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है कि बारिश में ही लगाना है, बस आपके पास में पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, इसे आप कभी भी लगा सकते हैं।
1: सर, इसमें किस प्रकार के बीमारी या कीट लगने की संभावना होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है?
0: जिस प्रकार से हमने आपको जानकारी दी कि ये जो पेड़ होता है महोगनी का, इसमें कम से कम बीमारी है, ख़ास तौर से इसमें दीमक नहीं लगता, क्योंकि इसकी जो जो लकड़ी है वो पूरी लाल होती है अंदर से, है ना, तो उसमें पहले से ही एक औषधि गुण होते हैं जिसकी वजह से मैं कभी भी टर्माइट या दीमक का प्रकोप कम होता है। फिर भी जो कुछ कीट हैं उसके लिए बचाव के लिए या सावधानी के तौर पे जब भी हम ज़मीन तैयार करते हैं पौधे रोपण के लिए तो उसमें जो भी फफूंदनाशी हो गया, कोई भी कार्बमेडिस्म हो गया या कोई भी थायरम हो गया या कोई भी सीडोमोनास हो गया, उस 1 से 2 ग्राम जो कवकनाशी है इसका उपयोग हम अपने ज़मीन में कर सकते हैं, ताकि फफूंद से होने वाली जो समस्या है जिसकी वजह से हो सकता है जड़ सड़न सड़न की समस्या आ जाए या तना सड़न की समस्या आ जाए, प्रारंभिक स्थिति में वो कम से कम हो जाएगा। तो इसका हम विशेष हमें ध्यान देना चाहिए।
1: सर, जो महोगनी का पौधा है पूरा बनकर तैयार हो गया और उसके बाद में हमारे जो किसान साथी उसे उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से उसका विक्रय कर सकते हैं और किस प्रकार से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
0: जैसे ही हमारा जो पौधा है महोगनी का वो 12 से 15 साल में परिपक्व हो जाता है और उसे हम भविष्य में उसको हम बेचना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ये बिक भी जाता है। जितने भी हमारे पास में जो स्टॉल है, ये टिम्बर मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, है ना, उनका खुद का जो आरा मिल है, आप वहाँ से भी आप संपर्क करेंगे तो आपको एक अच्छा रेट वहाँ से भी मिल जाएगा, क्योंकि आसपास में हमारे पास में दूसरा अभी फ़िलहाल तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, पर हमारे आसपास में जो जितने भी आरा मिल हैं ये भी कहीं ना कहीं से लकड़ी लेते ही हैं, तो ये हम महोगनी का जो पौधा है उसको अगर हम वहाँ बेचेंगे तो हमें बहुत अच्छे रेट इसके मिलेगा, क्योंकि ये प्रति घन फुट के हिसाब से इसका जो रेट होता है वो तय किया जाता है, ना कि जैसे हम बात करते हैं ना अपने गांव की भाषा में कि होंडा में बेच दिए, ऐसा नहीं होता, ये घन फीट के हिसाब से बिकता है। जैसा कि आप चंदन की बात करो, सागौन की बात करो, ये भी एक तरफ से वानिकी के पौधे हैं, पर उसी प्रकार से जो महोगनी का पौधा है ये भी हम उसी घन फीट के हिसाब से हम उसको बाज़ारों में बेच सकते हैं, और इसका जो मूल्य भी है वो भी दूसरे पेड़ों की तुलना में काफ़ी अच्छा है।
1: सर, अंत में हमारे जो किसान साथी वानगी पौधे लगाना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी आज जलवायु है और जिस प्रकार से हमारा आसपास का वातावरण है उसके लिए हमारे किसान भाई लोग के तरफ से अगर वो पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं कृषि वानिकी के माध्यम से तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, और उन्हें लगाना भी चाहिए, क्योंकि भविष्य में आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, क्योंकि कई बार भ्रांतियाँ ये भी होती है कि पेड़ पौधे हम तो लगा लेंगे पर अभी पर तुरंत हमको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता, जैसे हमारी फसलों में होता है कि 3 महीने में 4 महीने में हमको उसका तुरंत कैश पैसा मिल जाता है। पर आप ये सोच के पेड़ लगाइए

0: कि हमको महोगनी का पेड़ लगाना है और 12 साल के लिए हमको FD करना है। जैसे हम बैंकों में FD करते हैं ना कि भैया ये 1 लाख रुपए जमा कर दिए, अब 12 साल के बाद में हम इसका लेंगे, तब तो उसका ब्याज जुड़ते रहता है बैंकों में। तो उसी प्रकार से आप सोचिए कि हमने पेड़ लगा दिए हैं, अब 12 साल के बाद में एक FD के तौर पे इसको हम अपने बुढ़ापे के लिए बोल सकते हो या भविष्य की योजनाओं के लिए बोल सकते हो। इसको इस प्रकार से पौधे लगा के आप 12 साल के बाद में इसका उपयोग करके अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि कृषि वानिकी के माध्यम से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और हमारी जो जलवायु है, मौसम है, उसको संतुलित करने में हम सभी का सहयोग दें। धन्यवाद।
1: पर आपने किसान साथियों को, हमारे जो किसान साथी हैं उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और निश्चित रूप से कृषि वानिकी के संबंध में इससे हमारे किसान साथियों में जागरूकता आएगी। सर, आपके द्वारा दी गई जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: तो राहुल भाई, जिस तरह से हमारा बालाघाट जिला विकास कर रहा है और किसान भाई जिस तरह से विकास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे कृषि को भी जो सुदृढ़ता है वो मिल रही है, और लगातार सरकार के माध्यम से जो योजनाएं हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं, हमारे किसान भाई भी उन योजनाओं का लाभ लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और अगर विगत 12 वर्षों की बात करें, तो विगत 12 वर्षों की मुख्य उपलब्धियों में किसान भाइयों के जो ढांचागत सुधार है और उनकी आर्थिक प्रगति के लिए रिकॉर्ड किसान बजट जो है वो दिया गया
1: सरकार के
0: है,
1: द्वारा
0: हाँ,
1: दिया गया
0: सरकार
1: है।
0: के द्वारा दिया गया है,
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि किसान भाइयों की जो आय है वो दोगुनी हो,
1: दोगुनी हो।
0: चौगुनी हो,
1: जी हाँ,
0: बिल्कुल, और फसलों का जो उत्पादन मूल्य है उसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है, और कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए नए कीर्तिमान जो हैं वो इन्हीं 12 वर्षों में हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो है वो दर्ज किए गए हैं। और हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश की मुख्य उन्नति जो है वो कृषि से ही होती है, और रीढ़ फसलों के जो उत्पादन, जिसमें दालों का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है, चावल धान का उत्पादन होता है, और दूसरी अन्य जो फसलें आती हैं जिसमें उड़द मूंग और अलसी चना, ये सारी फसलें जो हैं वो लगातार विपुल मात्रा में हमारे देश के किसान भाइयों के द्वारा उत्पादित की जाती हैं, और किसान जो है वो खुश रहता है, उसको सरकार के माध्यम से सहायता मिलती है, तो निश्चित तौर पर किसान का उत्साह जो है वो दोगुना हो जाता है। और हमारे किसान भाइयों का सबसे सराहनीय प्रयास ये होता है कि वो कम लागत से कृषि को जो है वो करना पसंद करते हैं, ताकि उनका मुनाफा जो है वो बढ़े और भूमिगत जो साधन हैं उनका मैक्सिमम उपयोग जो है वो किया जा सके। इसीलिए जो जैविक कृषि पद्धति है वह सफल मानी गई है, और उससे हमारे किसान भाई जो हैं वो लगातार विपुल उत्पादन जो हैं वो ले रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे कि वर्ष 2024-25 में हमारे देश में कुल 150.18 मिलियन टन का जो रिकॉर्ड चावल उत्पादन हुआ, जो पिछले 10 सालों की अगर बात करते हैं 2014-15 की तुलना में, तो 105.48 मिलियन टन से सीधे सीधे 50 मिलियन टन जो है वो ज़्यादा है। अगर प्रतिशत में इसकी बात करें तो 42.38% की जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई। तो निश्चित तौर पर ये सभी आंकड़े बताते हैं कि सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है और किसान भाइयों के जो प्रयास हैं

0: इन्हें अगर दोनों को मिला देते हैं तो हमारे किसान भाई जो हैं वो निश्चित तौर पर अपनी आय को दोगुना करने के राह पर चल पड़े हैं और इनका लगभग जो सफ़र है वो काफ़ी हद तक जो तय है वो हो चुका है। और राहुल भाई, हम अपने बातचीत के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाइयों की तरफ से और सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ जो नई कृषि तकनीकें हैं जो अपनाई जा रही हैं, जिनका बढ़ावा जो है वो सरकार लगातार दे रही है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा किसान भाइयों के लिए। और किसान भाई भी इन जानकारियों को लेने में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और जिसका फ़ायदा मोटे अन्न और तिलहन उत्पादन के रूप में भी हमारे किसान भाइयों को मिलता जा रहा है। तो राहुल भाई, हम अपने किसान भाइयों से भी, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से भी, और सरकार जो है, भारत सरकार लगातार यह प्रयास जो कर रही है, तो हम अपनी अपील को इसमें जोड़ना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो हैं वो प्राकृतिक कृषि तकनीकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और अधिक से अधिक उत्पादन लेकर देश के विकास में अपना योगदान दें। तो राहुल भाई, आज के किसानवाणी कार्यक्रम को अब हम यहीं समेटते हैं। किसान भाइयों से अगले अंक में पुनः मुलाकात होगी नए विषयों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तो किसान भाइयों, दीजिए अनुमति आपके अपने किसान रेडियो मित्र संतोष बिसेन
1: और राहुल जोशी का स्वीकारे नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी किसान श्रोता साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान मणि। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के लिए ये पहला गीत था फिल्म अपना देश से, स्वर अर्षा भोसले और आर डी बर्मन का था। गीत के बोल आनंद बख्शी के लिखे हुए थे, संगीत था आर डी बर्मन का। सुनवा रहे हैं आपको फिल्म आनंद का ये गीत।

लीजिए इस गीत के बाद सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत। गीत के बोल शैलेंद्र के लिखे हुए हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

फिल्म ड्रीम गर्ल का अभी आपने ये गीत सुना, स्वर था किशोर कुमार का, शब्द आनंद बख्शी के थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनवा रहे हैं अब आपको जसपाल सिंह और साथियों के स्वर में फिल्म गीत गाता चल का ये प्यारा सा गीत। शब्द और संगीत रविंद्र जैन का है।

जी फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण के स्वर में फिल्म अनाड़ी का ये गीत। शब्द समीर के हैं, संगीत है आनंद मिलिंद का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम पॉप म्यूजिक। हमारे आज के कलाकार हैं अदनान सामी।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पॉप म्यूजिक अभी पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: The visit will provide an opportunity.
5: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
4: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
6: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।

0: 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के

उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए में। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ, जिसे लिया गया है गजल फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, मदन मोहन का है संगीत।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज़ में कैफी आज़मी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, एक नगमा आपके नाम किया। चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज़ की आवाज़ें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत।

0: छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिलीं जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गौले टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी

0: में बिठाया और वो बजाते रहे और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया।
1: क्या बात?
0: हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रहे हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कैसे आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तिरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

रुके बात गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: दिल पे मत ले यार, गज गामिनी, रहना है तेरे दिल में वीर।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: धन जवान अपना।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जब वो आ जाएं तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

वो शाम का ढलना, वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस्से हजार हो गई।

हुस्न की शोखी बहारों में है, उनकी आवाज की खनक दिल में दस्तक देती सी जान पड़ती है। क्यों उनसे दिल लगा बैठे, ये फसाना इश्क का जमाने से क्या कहें, पास आके दूर जाने की ये सजा क्या कहें।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

यहाँ भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज़े दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

कुचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना। तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

अभी श्रोता साथी सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हमने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से किया। एफएम बैंड पर यह प्रसारण आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म शोर के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और संगीतबद्ध किया है इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए, इसके बाद सुनवा रहे हैं आपको ब्लैकमेल फिल्म का गीत। स्वर किशोर कुमार का है, गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए हैं और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

गुलजार की शब्द रचना को अभी अपने संगीतकार आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था मासूम। सुनवा रहे हैं अब आपको किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में जावेद अख्तर के शब्दों को, जिसे संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने और हमने लिया है इसे फिल्म सागर से।

लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में फिल्म साथ साथ का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं कुलदीप सिंह।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में फिल्म तेरी मेहरबानियां का ये गीत। शब्द SH बिहारी के हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म तेरी मेहरबानियाँ के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों का अब संपन्न होता है। एफएम एंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। कृपया समाचार की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय आर एस रघु।